0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहा रेडियो 88.4 करक।
1: छोड़ दिया दिल को यूं बहना।
2: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतहाब रेडियो उमंग 88.4 करक। छोड़ दिया दिल को यूं
1: बहना। कुला तखुनन परिख्तियख कुल इखकारी
2: अस्माख कुले बवली नखकारम चिकला नमी सिफात पिचिक्रीम इस्तेमल अवल शुरू कर दी जमा द मखना द दने द गुना तरसीरी और द मख तुरवाली बिल्कुल खत्म शवी दी
1: वही अल्लाह दुमरा जर सिंगा
2: अस्माख सिफात पिचिक्रीम यो हर्बल और मायरी प्रोडक्ट दी चे 5 दिन इस्तेमल अवल सरा जमा द मखना दो वे मसले खत्म शवी
1: वाह ब्याह जहम गुआनम चे जमा मख ता पशन खैस्त खुला उस दारा तवया चे सिफात ब्यूटी क्रीम बंगता चिरत मिलवेगी
2: सिफात ब्यूटी क्रीम बस तासु ता हर कॉस्मेटिक्स इन जनरल स्टोर की पा असने सरा मिलवेगी।
3: You are listening Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.

0: Τώρα μαζί με ζητάρ το ουγγελιέ για πότε σα πάρσει δε τόσα εγώ χωστητή.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σα πάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρτερ ο χωστητή.
0: Έσμα βάσινγκ πόρτερ. Μάρα με ζή μου έχω κορτά national ο multi national. Καπνέιβολ βάσινγκ πόρτερ βορίβι. Κούρσε αξάρ γκυλάρ τα κίζε τα σαράγγε σαρά προβρέ.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γκυλέ δε χάρβα τε μουτάχα κούρσε κραλέ. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρτερ βορτάλ σε ρικρέτη. Ο στούλ κούρβαλα να χωστούλ δε.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरब रो उदार तो या चिप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खसूसियात थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खसूसियात दागा दी चि कपड़े सब युक्शुले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सफाई पवा लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दार तो ये दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने গলছে আন্দ্রনলা কি গেট জানজেবে গালে পশে মার্কেটে দেশমা মেন ডিস্ট্রিবিউটর হাফেজ ইরসেব সারদার তে মেলা বেশি।

मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक, जन रंग अमन।

0: डॉक्टर।
1: ओके जी, वही कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, टांग डबर है के। ओके जी, हाफिज साहब, यो जहान मनना जी, थैंक यू सुनने। बिल्कुल जी, टांग डबर के तोस्ता जेविस मार्केट के हाफिज शम्स जी, यानी हाफिज साहब दुकान के टोल सिफात प्रोडक्ट जी, माशाल्लाह मिला वी जी। हाफिज साहब सलाम, जेविस मार्केट के हाफिज शमशी दुकान के जी सिफात प्रोडक्ट मिला वी जी। और तीसरा कुंडी कोट के इब्राहिम कुंडी सर टोल प्रोडक्ट मिला वी जी। और टांग बजूर के जरबत खान जिससे भी दुकान के मशहूर दी कौन जी, अगर सर टोल प्रोडक्ट आज सिफात का होल सेलर दा जी, होल सेलर अगर सर टोल प्रोडक्ट मिला वी जी। और तीसरा टांग के जी मतीउल्लाह भाई सर, हाँ सर टोल प्रोडक्ट सिफात मिला वी जी। माशा नदी सरा सरा बिल्कुल लकी के नवरंग के बनू के कर के इसी बात जो हम प्रोडक्ट दी माशाल्लाह हर जगह तुसी निजदी से दागा मिलावी जी। और बका हेलो के जी आमिर एंड स्वीट सर है प्रोडक्ट जी माशाल्लाह मिलावी जी। ओके वही कहना चाहिए तो मेरी फेवरेट सॉन्ग है, बिल्कुल जी फेवरेट सॉन्ग लगे दलाई दशा।

0: अच्छा शाहजी
1: कमेंट रहा नहीं करे ऐसा खबर अनिश्चित
0: खबर है अतरे तो रड़ी रही जो शे बनू भी जवाब कॉस्मेटिक्स तो बेटा लाइशो इन तरला हाफिज लाइशो दिन डोमेन के सदफ कॉस्मेटिक्स तमर की बिलाल क्लॉथ एंड कॉस्मेटिक्स तो बेट लाइशो मंगल मिला के रहमानुल्ला और दिन अलावा वसीम तो बेट लाइशो और विरसरा विरसरा तुसे पो अंबीरी गली के चिकुमदा हाफिज खुशबु महल तो बेट लाइशो सनोला मार्केट के दिन अरूस शॉपिंग सेंटर तो बेट लाइशो विसरा विसरा तुसे बेट लाइशो बलचरता पो हमीदों की तुसे माहौल प्लाजा तो बेट लाइशो पो तख्ती नसरत की तुसे फेम ट्रेडर था देने वाला बिप कॉस्मेटिक्स था और विसरा विसरा पो कर के तासो अर्जी हंड्रेड प्लेस एंड कॉस्मेटिक्स सेंटर तरत लाइशे और अल्तना तुसे तरला सा कवरिश जिनर कॉस्मेटिक्स स्टोर प्रोडक्ट का मॉडर्न कश्मीरी बिक्रय सर जमुंगा एड्रेस थे सही शोला मॉडर्न कश्मीरी बिक्रय यू फोन फ्रंजाइज था बिल्कुल महामा और विसरा सलाम कॉस्मेटिक्स था दाऊद कॉस्मेटिक्स लाला कॉस्मेटिक्स दिन पो कर किस उम्र कॉस्मेटिक्स टोल तो तुसे वेट लाइश सही शोला पो मेटे खेलो की तुसे वेट लाइश हो जाता जीएसके कॉस्मेटिक्स था और देसरा सरा दुबई कॉस्मेटिक्स फिंसी कॉस्मेटिक्स अली कॉस्मेटिक्स टोल तो बेट लाइशो सबरबाद के हरून कॉस्मेटिक्स था डगर नरी नरिपनोस की चुकुम दे तुसे इम्तियाज कॉस्मेटिक्स तो बेट लाइशो पो नरिपनोस के करोड़ों की मौजूद देने लो डगर नरी के बाद इन ब्रदर्स कॉस्मेटिक्स तो बेट लाइशो पो टीरी की तुसे वेट लाइशो चाहता ठीरी की तस्वीर लाइशो हाजी जलाल कॉस्मेटिक्स तो हमारी मार्केट के मौजूद है उर्दून को पता कर शो की जमुन दखले जैसे खबर वतली हुई पेखफशी बहाना माजिरत इन शाला तो सरबा नेक्स्ट शो की सबाना बलोज दोबारा हाजिरी जू और पखपल दुआ गाने के बदल से मुझे योद सुते चिचर तवेरता खुशहाल बादा उसे दलो एलापो अमान
2: सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात हमारे साथ रहिएगा।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। अमन तासु औरे द रेडियो अमन 88.4 नशरियात तेत औरे तो डेरा मनाना।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क।
1: सिफात जैतून हर्बल ऑयल कतासु विख्त गुर्जीगी यादा मैदी तकलीफी और या ब्लड सर्कुलेशन मो ठीक नेवी जोड़ो दर्दुना यादा पटो दर्दुनेवी या पबदन कम जाय के मोह दर्दवी और दादीना इलावा तासो द बवसीरो डेर ऑपरेशन ने कड़ीवी और ठीक शेवी नेवी यदि टोलो मसलो हल द पारा सिफात जैतून हर्बल ऑयल इस्तेमाल करे दावत आसोता करक बनू लकी मरवत शिमाली वजीरिस्तान जनूबी वजीरिस्तान टांग और डेहान के हर कॉस्मेटिक और जनरल स्टोर के आसानी सरा मिलावेगी। नोस लाडशे निजदे कॉस्मेटिक एंड जनरल स्टोर ना सिफात जैतून हर्बल ऑयल तला सक रहे मजीद मालूमात पारा सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मेन डिस्ट्रीब्यूटर जहांगीर साहब सरा पदे नंबर रबिता कवले शे 0301-80-84-300।
2: You are listening Radio Amad Network.
3: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.

ओके जी, चारों तक अच्छे राज खान आर जे के एच एन राज खान वाचे वा राज खान यो जहान माना ना सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम क्या हाल है माय स्वीट बेस्ट वीआईपी अच्छा क्या हाल है माय बेस्ट वीआईपी एंड लॉयल चाचू आई एम योर क्यूट लिसनर डॉक्टर अर्शी खान एंड अनुशी वजीर फ्रॉम क्यूट डुमेला और गुल आई लाइक अच्छा जुमेल गोला आई लाइक यूर शो आई लाइक यूर वॉइस आई लाइक यूर मैनर आई लाइक यूर स्टाइल स्वीट चाचू प्रोग्राम दे साम घोष दाय लका हलवा दिस टपे डेडिकेटेड जस्ट फॉर यू वही चार जिगान टूर रहा बांधे ग्रांडी हर जिगान टूर रहा बांधे ग्रांडी सही था ऐसा हॉन कंप्लीट ठाफा देगा ना यू जहान मैंने वही सलाम में वर्क आये जैनब वजीर था रोशी खान था खुशी था अमन था मरवा था लाडली जीमल था अली ने था एक रहता ओके माई लाइफ लॉन्ग थैंक यू सो वेरी मच मैसेज के बोले यू जहान मनाना डॉक्टर अर्शी एंड अनुशी अनुशी वजीर फ्रॉम डुमेल यू जहान मना थैंक यू सो वेरी मच भाई सलाम और राज भाई नाना आप नाना आप साथ में ओके जी ठीक शुआ यू जहान मनाना इट्स मी लाडली जीमल फ्रॉम करक सलाम और स्वीट बाई वेलकम टू द शो वालेकुम सलाम लाडली जीमल द मैसेज का वाले थैंक यू सो वेरी मच एंड मोस्ट वेलकम टू यू वंस अगेन इट्स मी लाडली जीमल फ्रॉम करक सदैव वफात है नूर था एनी था दूसरा क्यूट रुशी खान था और दूसरा गुल्ला लई था फातिमा वजीरिस्तान था सायर वजीर था और टूर गुल गुल लेसनर था सलाम भाई एस एम एस था जी अच्छा दुमरे काम और टाइम वेल ओवर के वे जक जे टाइम ढेर काम हिस्सा ओ जी सलामुना राज भाई उजाला खटक हूँ शो बहुत प्यारा है और मनाहिल भी सलाम दे रही है वालेकुम सलाम और आज उसकी सांस बंद रही है दुआ करे अल्लाह पाक तखीर हो कि अल्लाह पाक ताक चली सेहत ने वेर की सुखो बीमारी दी चाहते समझ ले दी अल्लाह पाक ते ओका तकलीफों ने मुसीबतों ने जर नजर सीधा अल्लाह पाक खत्म की अल्लाह पाक ते ठीक जी रोग से खतुने वेर की मुझे ठोल दुआ गाने में तक वो कहना जिस सुखों भी मरों दीजिए उजाला दे मैसेज के बोले यू जहान मन इट्स मी लाडली जी मैं फ्रॉम कर भाई शो दे मोरवा दे रमजा के भी तीन मिनट ओ खोंदा सिस्टर था मैं रिकॉर्ड खावा ओके से इट्स मी लाडली जिमल फ्रॉम करक और स्पेशल सलाम डॉक्टर अर्शिता वालेकुम सलाम जी थैंक यू सो वेरी मच दासी चल कम गना चीज तो सार इसी बीच दा आगा शामिल ला वा के ची तर उसरे टेंपो तो शकना बिया दे सर बिल्कुल तो से काल ख शामिल ला वा ठीक है मैसेज नहीं तुमरा डेरो शा बस के चावला ना पोती बिया पागे में बख्शना और मजरत ची दा अफ गोणा खुसर तो सर इसी बीच दा आगा शामिल ला

जी नो बिल्कुल ना। हाँ जनाब नवेल इस्तेमाल हुए वो क्या यू आदत खुजिफा कंपनी शिफा विटामिन सी फेस वाश यू आदत खुजिफा कंपनी विटामिन सी फेस वाश सरा कचेरे तुस्ताखा मिलाओ नशी आ तुस गुड़ ही चिमिश्ता डायरेक्ट अक्षल वाला स्पिन वाला दुने दुगिना डबिना तरसेरी गाड़े वाड़े आ हा हा दार सहा तमशी ओड़ा डबीना वड डबीना लुई डबीना या डेर जोड़ा डबीना या पमा मो दुगी ना दिखा ना जी इस्तेमाल है वो की जी खुजिफा कंपनी राइस फेस वाश हम मार्केट तरो वाला खुजिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम पेटे में लगा हुआ हल्का कौन दे मसाज सब ये पदा फेस वाश या जनाब विटामिन सी फेस वाश द खुजिफा कंपनी पदे विन से का ना माँ हो नबे ललेदे था खो बबे ललेवी माँ

रहे खूबसूरत बन जाए, जब साथ हो एक खूबसूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 का रख, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।